जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्यष्टोदर्शन श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो

जगन्नाथ की काम की जय, मायापुर धाम की जय, गंगामय यमुनामय की जय, भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय, समवेत